0: ये मार मार चुक शी तेरे से कतई भी तो ये तू शी तेरे ये खाली ये चे चिकेल में जो जगह जो
1: ये सिंगू ये तंदे ने जो 규령 상통 마시